अवरचा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रो दुष्चित उठव तुत पाता सकल मलेश करो रन काता जस तो तब शरणी परे तनके दुष्ट दुख तो हुआ मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तै ता के कार निकटने रचाओ ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट अनित काला कृपा दृढ़ तन जाय निहर हो ताकि ताव तन को मोहर हो रित सिद्ध कर्म सब हो दुर्शास हो सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फास्त ताहे उबारा जन नर नाम तिहारो का दारिद दोष्ट दोख तेरा खड़के तुम्हें शरण तिहारिया पादले उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते देहो बचाई खड़के तुम्हें शरण तिहारिया पादले उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पै मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज छेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बनाइयां शब्द तां गावो हरि केरा मंजनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया मन मेरिया तू सदर हो अरनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारन सबना गल्लां समरथ स्वामी सोका मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा घर तां तेरा सब किसे जिस दे सो पावे सदा सब सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन कह मन वसिया वाजी शब्द कनेरे कह नान सचे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किया गुरु विटो जिस दियां वड्याईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत् घर सुभागा घर सुभागा शब्द वाजे कला जैत घर धारिया पंच दूत दवास किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख वत करण वाजी साची लिवे बंदी नमाणी देह नमाणी लिवे बाजू क्या करे विचारिया बदबाद सुमरत कोई ना कृपा करबन वारी सुनाओ उठाओ ना शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजू क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जाने जाने आनंद सदा गुरु

खेल खिलाए, संजोगी मिले किसे भी जोगी उठ जाए, जो तिस पाना सो थिए अवर न करना जाए, गुरमुख बस साइए सच बखर सच रास, जिनी सच बणंजिया गुर पूरे सवास, नानक बस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास, सिराग महला पहला तात मिले पुन तात को, सिवती सिवत समाए, लाल गुलाल गहबरा चढ़ा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जप एके पाए, पाई रे संत जना की रेना, संत सभा गुर पाइये मुक्त पदार्थ तेना, राव उचो थान सुहावना उपर मैल मरार, सच करनी ते पाइये सच करनी दे पाइये, दर कर मैल प्यार, गुरमुख समन समझाइये आत्म राम विचारा, त्रेबद कर्म कमाइये आस अंदेसा होए, क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट से सहज मिलिए सुख होए, निज कर महल पछाणिए नदर करे मलत होए, बिन गुर महल न उतरे बिन हर क्यों कर बास, एको शब्द विचारिये अवरते आगे आस, नानक देख दिखाइए हूं सद बले हारे जास, सिराग महला पहला त्रिग जीवन दो आगनी मुठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस घर टह पाए, बिन शब्द सुख न थिए पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार, दर कर टोपे ना लय दर गए झूठ खवार, राव आपस जान न भुलै सच्चा बड़ किरसान, पहला धरती साधके सच नाम दे दान, नौने दे उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जाने क्या तिस चज चार, अंदले नाम विसारिया मनमुख अंध गवारा, आवन जान न चुके मर जन्मे होए कुवार, चंदन चंदन मोल आणिया कुंगू मांग सधूर, चोआ चंदन बौकना पाना नाल कपूरा, जे तन कंत न पावे ता सब डंबर कूड़, सब रस भोगण बाद है सब सिंगार बिकार, जब लग शब्द न भेदिए क्यों सोहे गुरुद्वार, नानक तन सुहागणी जिनसै नाल प्यार, सिराग महला पहला सुंजी दे डरावनी जा जियो विचों जाए, पाए बुलंदी भिज भी तू नानक सो काए,

फुन बांदी सठ कठोर कुचिल गोकियानी तावत भ्रमत रह नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरित बिकल बड़ो अभिमानी पर तन पर पवाद नार निंदा जह मीठी जी माए धानी बल बंच छप करत उपावा पेकत सुनत प्रभ अंतर जामी शील धर्म दया सुचनास्त आयो सरन जी के दानी कारण करण समरथ श्री धर राख लिहो नानक के स्वामी कीरत करन सरन मन मोहन जोहन पाप विधारण कौ हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलहै समूह उदाहरण सौ चित चेत अचेत जान था संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूर्त करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लौ होचो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिखिया संत ना भज नानक राम रंग आत्म च्यों रौ रंचक रेत खेत तन निर्मित दुर्लभ दे सवार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भोजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रत नित आवत निकट बिकम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी ए करी कर गै लियो कृपाल कृपा निद नानक काट भ्रम परी रे मन मूस बिला मैं गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तांस्यो मोह बड़ियो सो घना बोयो बीज अंग मम अंकुर बीटत औद करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भगत भूख पुकना सिमर गपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना दे ना गे ना ने ना नीता माया मत कहाँ लोगार हो शतर ना पतर ना चावर ना चावर बहुती जात हृदय ना विचारो रत ना सु ना गर सिंघासन शिन में त्यागत नाग सुधारो सूर ना वीर ना मीर ना खनम संग ना कौन दृष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत बेकार दऊ कर चार हो मृत ना पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरकी शार हो दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपार हो श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा करतार हो प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन में सुत भाई ताहू ते ले रखी निरारी धामन पावन कूर कमावन ए बिद करत औद तन जारी करम धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिद हारी पस पंखी बिरख अस्थावर बहु बिद जोन भ्रम्यो अत पारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्म आदिक शिव छंद मुनीसर

जय जय जंपहे असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपहे काटे सो पाप तिन नर होके गुरु रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन प्रथमी गुरु अर्जुन कौ दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुर प्रसाद श्लोक वारा देवधीक महला पहला उतंगी पहवरी गहरी गंभीरी सुसुड़ सुहिया किव करी नेव ना जाए थनी गठ जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीटेंदे डिठ मैं मुंदना गर्भ थनी सुन मुंदे हरनाखिए गूढ़ा बैन पार पहला वासी आण कहता कीचे व्यापार दोहे दिते दुर्जना मित्रा खूं जयकार जित दोहे सज्जन मिलना लौ मुंदे विचार तन मन दिजे सज्जना ऐसा हसनसार ते सौने उना कीचे जे दिसे चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना विटो कुरबान जे तू तारू पान ताहू पुष्टणन कल ताहू खरे सियाण मुंया इनी कपरी चढ़ चखड़ उहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर सिंह लाए बेड़े डुबण नाहे पाओ नानक दुनिया कैसी होई साल कमित ना रहे हो कोई भाई बंदी हे चुकाया दुनिया कारण दीन।

ना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग है, पोहे न तिसमाए, भगत एहो आराद गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए, पवित्र धर्म वाहिगुरु पीवत अमृत नाम, जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लाग ते जिसनु विसरै नाउ, नानक अन दिन लिपते, नानक अन दिन बिलपते, ज्यो सुन्यै घर काउ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत ना विसरै, नानक रविय नित पौड़ी, सूर वीर वरियाम किने ना होड़ी है, फौजल संतानी हाट पंचा जोड़ी है, दास नारी अवधूत देन चमोड़ी है, जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है, त्रै गुण इनके वस किने न मोड़ी है, परम कोट माया खाई कहो कित बिद लोड़ी तोड़ी है, गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है, हों तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किलविक सभ्य उतरण नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजै, नानक विसरै नाउ। महला पंजवा। नानक सतगुर भेटिया पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवै मुक्त पौड़ी, सो सतगुर धन धन जिन भरम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हर सिउं जोड़िया, नाम निदान अकुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निदान बहुत खजाने, जिता जन्मा पारिया पछाणिया, महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख भेव। श्लोक महला पंजवा। उदम करेंद्या जियो तू, कमाउंद्या सुख भुंज त्याएंद्या तू, प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। सब चिंतन गोबिंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसराउ एक घड़ी।

कर कृपा भगवंत नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता हुए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आया आया चित निहाल साहेब बेशुमार तिस ना पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किच तिस कै वस ना कोई बाहरा सो भगता मन वूठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखण वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवां काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट